दोस्त और साथियों स्वागत है आपका मिर्ची वाला एफएम पर मैं हूं मिर्ची वाला राजेश आपके और सिर्फ आपके साथ रात 10 बजे तक सुनना ना भूलिएगा रात 8:15 बजे मिर्ची वाले हिट्स 8:30 बजे रेट्रो रॉक के हिट थे हिट रहेंगे मिक्स टेप और उसके बाद दीवाना लेकर आया है रात 9:30 बजे सुनना ना भूलिएगा पेश कर रहा हूं एक और बड़ा ही प्यारा सा गीत आपकी नजर बस एक धड़क

श्रेया घोषाल के साथ आवाजें थी भला किसकी जुबेन नोटियाल की आप सुन रहे हैं मिर्ची वाला एफएम मिर्ची वाले राजेश के साथ अपनी पसंद का गीत सुनना चाहें तो 0402-397-064 है मेरा नंबर सुनना न भूलिएगा रात 8:15 बजे मिर्ची वाले हिट्स जी हाँ और धड़क के साथ अगर भीगी साड़ी बात कर रहा हूँ परम सुंदरी के इस गीत में जिसमें एक बार फिर श्रेया घोषाल के साथ जुड़ेंगे अदनान सामी

जी अभी की सारी आपने सुना परम सुंदरी में और अब शामिल कर रहा हूं परम सुंदरी से लाल परी का ये सफर देखिए कितनी जल्दी सिर्फ और सिर्फ आपके साथ हाउसफुल 5 का ये गीत यो यो हनी सिंगर

दीवाने शहर में आपने सुना ये गीत और अब शामिल कर रहा हूं पनवाड़ी यानी कि सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी

केशरीलाल यादव और निकिता गांधी के साथ अक्सा की प्यारी सी कंपोजिशन आपने सुनी मिर्ची वाले हिट्स में अब शामिल कर रहा हूं बोल काफरा क्या होगा जी हां नेहा कक्कड़ के साथ आवाजें हैं फरहान साबरी की और आप सुन रहे हैं एक दीवाने की दीवानियत का ये गीत

सेगमेंट बदलूं और आपको ले चलूं गोल्डन हिट्स हिट थे हिट रहे सेगमेंट में एक प्यारा सा और गीत जो इस वक्त तमाम हिंदी प्रोग्राम्स में महफिल की शान बना हुआ है एक दीवाने की दीवानियत का ये गीत

0: Ladies and gentlemen, Mirchiwala FM now presents Bollywood songs at 90.5 FM every Thursday night. Stay tuned to Mirchiwala FM. Behno bhaiyo, Mirchiwala FM ab pesh karte hain Bollywood filmi geeton ka sangam 90.5 FM par. Sunte rahiye Mirchiwala FM.
1: रात के 8:33 माफ कीजिएगा 34 मिनट हो चुके हैं. आई एम रनिंग 4 मिनट लेट, मगर सेगमेंट में आज मजा आने वाला है क्योंकि आप सुनने जा रहे हैं एक बार फिर हिट थे हिट रहेंगे कि ये बेहतरीन गीत और उनमें सबसे पहले शामिल कर रहा हूं.
2: डाउनलोड करिए ओरिजिनल हाई क्वालिटी सॉन्ग्स.
1: वाओ

0: जिसका मुझे था इंतजार वो वाकई वो घड़ी नहीं थी जो आपने सुना डाउनलोड कीजिए आप सुने हिटते हिट रहेंगे मिर्ची वाला एफएम पर मिर्ची वाले राजेश के साथ
1: ये गाड़ी इसी वक्त रोज न जाने कितने मुसाफिरों को कहां से कहां ले जाती है इसी तरह ये मुझे भी एक दिन मेरे जीवन के दुख के साथ यहाँ ले आई

रफी साहब की बेहतरीन आवाज में आपने सुना ये गीत टाइटल ट्रैक था फिल्म महुआ का आप सुन रहे हैं हिट थे हिट रहेंगे मिर्ची वाला एफएम पर मिर्ची वाले राजेश के साथ

Ladies and gentlemen, Mirchiwala FM now presents Bollywood songs at 90.5 FM every Thursday night. Stay tuned to Mirchiwala FM. Behan aur bhaiyo, Mirchiwala FM ab pesh karte hain Bollywood filmi geeton ka sangam 90.5 FM par. Sunte rahiye Mirchiwala FM. रात के 9 बज चुके हैं और प्रोग्राम के इस सेगमेंट मिक्सटेप जैसा नाम वैसा काम में आपका स्वागत है

मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे। आप सुन रहे हैं मिक्स टेप जैसा नाम वैसा काम। सुनना ना भूलिएगा, रात 9:30 बजे हमारी एक स्पेशल सेगमेंट दीवाना लेकर आया है।

बंगले के पीछे और बेरी के नीचे आपने सुना रिमिक्स जैसा नाम वैसा काम मिक्स टेप में और अब बारी है जी हां गेस करना चाहें तो कर लीजिएगा क्योंकि आप सुनने जा रहे हैं राहत फतेह अली खान साहब का गाया हुआ यह गीत फिल्म तेज से सुनना न भूलिएगा रात 9:30 बजे दीवाना लेकर आया है

जी आप सुन रहे हैं जाते हुए लम्हों बॉर्डर 2 जो कि हाल ही में रिलीज हुई और आपके दिल के बहुत बहुत करीब ये गीत विशाल मिश्रा और रूप कुमार राठौड़ का गाया

0: Ladies and gentlemen, Mirchiwala FM now presents Bollywood songs at 90.5 FM every Thursday night. Stay tuned to Mirchiwala FM. Behan aur bhaiyo, Mirchiwala FM ab pesh karte hain Bollywood filmi geeton ka sangam 90.5 FM par. Sunte rahiye Mirchiwala FM.
1: रात के 9:30 बज गए हैं और प्रोग्राम के इस सेगमेंट दीवाना लेकर आया है मैं सबसे पहले जो जीता वही सिकंदर का ये गीत आपकी नजर

किशोर जी का गाया हुआ गीत आपने सुना और प्रोग्राम में हम शामिल कर रहा हूं एक बहुत ही प्यारा सा गीत एक प्यारी सी आवाज के मालिक सोनू निगम जी का गाया हुआ